मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज रविवार है। शक सम्मत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है प्रातःकालीन सभा।

0: सिकंदर है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आइए दिल्ली केंद्र से सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
2: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने 1 दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर

0: ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। खेती की बातें इस कार्यक्रम में सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। अगर आप शकरकंद की खेती करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। इसकी बेलों की रोपाई का समय जुलाई माह से लेकर अगस्त माह तक होता है। गन्ना की खेती के लिए भुरभुरी बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दो तीन जुताई देसी हल से करके खेत को तैयार कर लेते हैं। इसकी अच्छी खेती के लिए 100 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद खेत में थोड़ा पहले मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम जुताई के समय 30 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना चाहिए। खेत तैयार हो जाने के बाद 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़े बना लें और फिर इन्हीं मेड़ों पर शकरकंद की बेलों को लगाएं। मेड़ पर एक बेल से दूसरे बेल की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बेल को सीधे नहीं लगाया जाता, बल्कि इसके 30 से 45 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें। ध्यान रहे कि एक टुकड़े में कम से कम 4 गांठें हों। टुकड़ों को इस तरह लगाएं कि टुकड़ों का अंतिम सिरा जमीन में दबा हो तथा बीच में दोनों गांठें जमीन से बाहर हों। फिर रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। शकरकंद की जो प्रजातियां हैं वह हैं पूसा लाल, पूसा सफ़ेद, पूसा सुनहरी, FA17, AH41 और H42। इनमें से जो प्रजाति मिल जाए लेकर के बुआई करें। धान की फसल में खैरा बीमारी का प्रकोप हो जाता है। ये जस्ते की कमी के कारण होता है। जस्ते की कमी के लक्षण पौधों के ऊपरी भाग, दूसरी या तीसरी पूरी तरह परिपक्व पत्तियों से प्रारंभ होते हैं। पौधों की बढ़त रुक जाती है और पौधे छोटे रह जाते हैं। तने के ऊपरी हिस्से में गांठें नज़दीक बनने लगती हैं तथा पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो कि बाद में बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं तथा फसलों में बालें देर से निकलती हैं। जब निश्चित हो जाए कि धान में जिंक की कमी है तो फिर इसको नियंत्रित करना चाहिए। इस हेतु हम जिंक सल्फेट प्रयोग करते हैं। इसे या तो रोपाई की पहले खेत में मिला देते हैं या तो खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं। अगर रोपाई से पहले खेत में मिला रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाना चाहिए और यदि खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं तो 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 8 किलोग्राम यूरिया को 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जो धान पहले रोपे गए हैं उनकी देखभाल बहुत ही आवश्यक है। अगर खेत में नमी की कमी हो तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था ज़रूर करें। कल्ले फूटते समय भी खेत में पर्याप्त पानी होना चाहिए। इसके अलावा धान की फसल में निकाई गुड़ाई करके खरपतवार भी निकालते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खरपतवारों के कारण फसल को काफ़ी हानि होती है। यदि रासायनिक दवाओं से खरपतवार नष्ट करना चाहते हैं तो 2-4 D ईस्टर दवा प्रयोग करनी चाहिए। इसकी 400 ग्राम मात्रा को 300 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। फिर 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से रोपे गए धान में कल्ले बनते समय बुरकाव करना चाहिए। इस समय मध्यकालीन फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। इसके बेहन डालने का समय जुलाई माह से अगस्त माह तक होता है। इसकी जो किस्में हैं वह हैं अर्ली स्नोबॉल, जायंट स्नोबॉल, हिसार 1, पंजाब जायंट 26 और पंत शुभ्रा। एक हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई के लिए क्यारियां बनानी पड़ती हैं। यदि एक हेक्टेयर रोपाई हेतु बेहन तैयार करना है तो 3 मीटर लंबी

0: 1 मीटर चौड़ी तथा 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी 5 क्यारियां बना लेते हैं। इन क्यारियों में 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर खेत तैयार कर लेते हैं। जब पौध तैयार हो जाए तो फिर रोपाई करनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
1: सामयिक कृषि कार्य, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

नौ प्रभात की पावन बेला, सुंदर सुबह की शुरुआत। आइए करते हैं भक्ति भाव भावना आराधना से।

सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य किसी शब्द में समाया नहीं, शिवम सभी को सुख शांति या आनंद देता चला जा रहा है, सुंदरम जो सत्य है, शुभ है, वही सुंदर है।

हमारी आती जाती ये सांसें हर पल ईश्वर का नाम ले रही हैं, और जब तक सांसों के तार जुड़े हैं शरीर में, जीवन का संगीत बज

0: जहाँ भाव है वहीं भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहीं भावना है, जहाँ भावना है वहीं प्रभु की आराधना है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज आपने सुना हरिहरन, आशा भोसले, ओम व्यास, जयश्री गुप्ता और बागेश्वरी देवी के गाए भजन। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। विचार बिंदु में आइए सुने भगवान बुद्ध के विचार।
1: भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे, प्रेम, सहानुभूति और दया की साक्षात मूर्ति थे। उनका उपदेश था कि जन्म मरण और सुख दुख जन्म से उत्पन्न होते हैं। जन्म अथवा आवागमन ही इनका मुख्य कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें जमीन में फैली होती हैं, उसी प्रकार जन्म मरण, रोग या शोक का मूल आवागमन है। ज्ञान के अभाव में पूरी दुनिया दुखों का घर बन जाती है। मूर्ख मनुष्य अपने अज्ञान से ऐसी वस्तुओं को बंधा करता है जो बिल्कुल सारहीन और व्यर्थ होती हैं और जो उसकी आत्मा को भुलावे में डाल देती हैं। ऐसी असत्य वस्तुओं को अपने चारों ओर चमक दमक के साथ देखकर उसके मन में तृष्णा और ज्वाला जगती है, जो प्राणी मात्र को भ्रम के जाल में डालती है। इसके विपरीत जब झूठी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, तो भ्रम और अज्ञान का सारा अंधकार दूर हो जाता है। उसके स्थान पर ज्ञान, शांति और वास्तविक सुख का सूर्य उदय होता है। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को दिए गए उपदेशों में कहा था कि जीवन के 2 प्रतिवाद हैं। एक है भोग विलास का जीवन, जिसमें मनुष्य इच्छाओं और तृष्णाओं में फंसा रहता है। सांसारिक मोह माया में फंसा वो शारीरिक सुख साधना की चिंता में ही लगा रहता है। ये मार्ग झूठा और असत्य है, यही नाश का मार्ग है। दूसरा मार्ग आत्मनिग्रह का मार्ग है। शरीर को नाना प्रकार के कष्ट देने का मार्ग भी व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया है, जिससे शाश्वत सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। इस मध्य मार्ग को ही अष्टांग मार्ग कहा गया है। इस मध्य मार्ग के 8 श्रेष्ठ अंग हैं। पहला मार्ग सम्यक सृष्टि कहलाता है। ये दृष्टि रखना कि जीवन में दुख है, दुख अकारण नहीं है, दुख दूर किए जा सकते हैं, दुखों को दूर करने के उपाय भी हैं। अर्थात बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य कहे हैं, उनमें अटल विश्वास रखना। दूसरा सम्यक संकल्प है, जो कार्य करने योग्य नहीं है उसे नहीं करने

0: संकल्प, अद्रोह संबंधी संकल्प, अहिंसा संबंधी संकल्प इत्यादि। तीसरा सम्यक वचन है झूठ बोलने से दूर रहना, चुगली करने से बचना, कड़ी बात कहने से बचना तथा व्यर्थ की बातों में भाग लेने से बचना। चौथा मार्ग सम्यक कर्मांत का है। इसके अंतर्गत प्राणी हिंसा नहीं करना, जो नहीं दिया गया है उसे नहीं लेना, दुराचार से बचना और भोग के अतिचार से दूर रहना। पांचवा सम्यक आजीव है। गलत रोजगार से अगर रोजी चलती हो तो उसे छोड़कर ऐसे रोजगार में लगना जिससे धर्म नहीं बिगड़ता हो। छठा मार्ग सम्यक व्यवस्था का है। दुर्व्यसन और कुटेव को छोड़ने की कोशिश करना, मन में पाप के भाव जगते हों तो उन्हें दबाने का प्रयत्न करना, मन में जो अच्छे विचार पैदा हों उन्हें बढ़ाने की चेष्टा करना, अपने व्यक्तित्व को निर्मल विमल और पूर्ण बनाने की कोशिश करते रहना। सातवां सम्यक स्मृति का मार्ग है। शरीर में बुढ़ापे, रोग और पाप के बीज हैं, इसका ध्यान रखना और क्षण क्षण भीतर से जागरूक रहकर वासना का दलन और ज्ञान का विकास करना। आठवां और अंतिम मार्ग सम्यक समाधि है। चार प्रकार के ध्यान जिनमें वितर्क और विचार से मन को भावों को सुलझाया जाता है, शांति और एकाग्रता से अपने आप को जानने की कोशिश की जाती है, सुख तथा दुख दोनों से अलिप्त रहने की भावना का विकास किया जाता है। एक बार महात्मा बुद्ध गया के समीप के उपवन में डेरा डाले हुए थे। बहुत से लोग उनके उपदेश सुनने आए। अचानक दूर राजगृह की घाटी के पार सारे जंगल को आग की लपटों ने घेर लिया। सभी शिष्यों ने इस दृश्य को देखा। इस घटना पर भगवान बुद्ध ने लोगों को महान अग्नि शिक्षा दी। भाइयों, हमारे चारों ओर, हमारे बाहर और भीतर प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अणु परमाणु आग से जल रहे हैं। तृष्णा और अहंकार को अग्नि जला रही है, सभी दुखों से जल रहे हैं। ज्यों ज्यों हम सुखों की चिंता करते हैं त्यों त्यों अग्नि अधिक भड़कती है और जलन तीव्र होती है। सभी वस्तुएं परिवर्तन की भट्टी में जल रही हैं। समय अपने आघातों से उन्हें अपने अनुकूल ढाल रहा है। जो धर्मात्मा लोग किसी की हिंसा नहीं करते, शरीर की वृत्तियों का संयम कर पापों से बचे रहते हैं, वे उस निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे भगवान बुद्ध के विचार। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में दुर्घटना और प्राथमिक उपचार विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजय यादव।
2: घर का वातावरण थोड़ा सा ज्यादा बाहर से लेस कॉन्टेमिनेटेड होता है, फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे अगर हैं तो उनको अनअटेंडेड या बिना अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पानी में फिसल के गिर जाए, बहुत सारे होते हैं कि पानी की टंकी में गिर गए, बाथटब में गए, तो उनको अकेला नहीं छोड़ना है। दूसरा प्रिकॉशंस वगैरह है, आजकल जैसे घरों में टाइल्स वगैरह लगी रहती है तो थोड़ा सा गीला है नहीं है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज प्राइमरी उपचार में नॉर्मल ओवर द काउंटर कुछ दर्द की दवाएं वगैरह होती हैं, जैसे घरेलू इलाज होते हैं, बर्फ की सिकाई होती है, पैर को ऊंचा रखना होता है या गर्म पट्टी बांध लेना होता है, ये सारी चीजें घर में करी जा सकती हैं। फिर भी अगर लगे कि कुछ दिनों के बाद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो उसमें मेरा सुझाव है कि चिकित्सीय परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। लापरवाही तो भय वो बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए कुछ हमारे रेड फ्लैग साइंस और डेंजर साइंस होते हैं। जैसे मान लीजिए चोट लग गई और उसके बाद व्यक्ति अपने आप खड़ा नहीं हो पाया तो इसका मतलब है कि चोट गंभीर है। अगर ऐसी स्थिति है, व्यक्ति अगर चोट लगी गिर गया उसके बाद वो दो चार कदम, आठ दस कदम चल पा रहे तो इसका मतलब चोट गंभीर नहीं है। तो अगर इस तरीके से गिरे हैं कि उसके बाद आप अपने आप स्वयं चल नहीं पा रहे नहीं हो पा रहे तो ये गंभीर चोटों की निशानियां हैं। ऐसे में आपको तुरंत अस्पताल और अप्रोप्रिएट सेंटर जाना चाहिए। देखिए ये सारी समस्याएं जो बच्चों की चोटें होती हैं उनमें ज्यादा आती है, क्योंकि बच्चे जो हैं एक तो पहले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, कह नहीं पाते। बच्चों में थोड़ा सा सहने की क्षमता भी कई कई बार ज्यादा होती है, तो बच्चों की चोटें हैं उन पर सोचने की जरूरत है। उसमें चिकित्सीय परामर्श जल्दी लेना चाहिए क्योंकि कई कई बार चोटें हल्की होती हैं और वो उस समय पता नहीं चल पाती हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसके साथ उन चोटों का असर पता चलने लगता है। तो इसमें मेरे ख्याल से जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है कि बच्चों की चोटों को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से आई थिंक पहले मुश्किल था, अभी अगर आप सबसे पास के सरकारी अस्पताल में जाकर अगर उसको एक बार दिखा लेंगे तो उससे नुकसान नहीं होना चाहिए और इन सारी लंबी समस्याओं से, क्योंकि बाद में उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इन सब समस्याओं से भविष्य में बचा जा सकता है। घर में जो आप प्राथमिक उपचार के किट मान सकते हैं उसमें आपका कॉटन वगैरह

0: सकता है, आपका डेटॉल या सेवलॉन हो सकता है, इस तरीके की चीजें, बैंडेड वगैरह हो सकती है जो कहीं कट लगे तो आप उसको लगा लें। इसके अलावा दर्द की कुछ गोलियां हो सकती हैं या ओवर द काउंटर कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह हो सकती हैं, बट फिर भी ये बहुत, मैं इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करूंगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसकी सलाह लेना आवश्यक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं टांके लगाने की जरूरत पड़ जाए, नहीं पड़ जाए तो उसमें अगर टांके लगाए तो निशान थोड़ा सा कम आता है। इस तरीके की चीजें होती हैं जो एक एक्सपर्ट ही देख के बता सकता है। पैर पे तो हम खड़े होते हैं, तो अगर हमें लग रहा है कि कुछ टूट गया है, तो टूट गया है तो वो एक ज्यादा गंभीर चोट होती है, वो व्यक्ति को खुद पता रहता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है उसमें, आपकी आप वजन नहीं डाल पाएंगे, हाथ को हिला नहीं पाएंगे, हिलने पे हड्डियों को रगड़ने की आवाज आएगी जिसको क्रेपिटस बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको उसको इमोबिलाइज करना है, ऐसा लगाना है जैसे जो भी आपके आसपास सामान मिल जाए, कोई लकड़ी की छड़ मिल जाए या छाता मिल जाए या गत्ता मिल जाए, वो बांध के आप उसको, जिससे कि उसका हिलना कम हो, दर्द कम हो, और इसके बाद उसको अस्पताल ले जाए जहां पर उसका एक्सरे वगैरह करवाया जाएगा। एक्सरे और सीटी स्कैन इमरजेंसी के इन्वेस्टिगेशन से, बाकी आवश्यकता अनुसार जो स्पेशलिस्ट है वो जैसा एडवाइस करे वैसा करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, जिंदगी चलते रहने का नाम है। हाल ही में अभी हम बहुत एक विभत्स विमान हादसे से पूरा देश गुजरा है, तो उन सभी को मेरी श्रद्धांजलि और कॉन्डोलेंसेस। तो दूसरा, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे, हम किसी भी फील्ड में हो, हमें एक एक्टिव रहना है, अपने आसपास के एरिया के प्रति अवेयर रहना है, और अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि कुछ चीजों में कमी है, शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको बिना डरे बिना हिचके प्रॉपर जगह पे बताना है, सो दैट उन चीजों को सही किया जा सके। कई कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी गड़बड़ को, और बहुत सारी हैं, फॉर वेरियस रीजन चीजों को दबा दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से अगर उनको दबाया नहीं जाएगा और जो सुझाव आपके पास आ रहा है उस पर अगर हम कार्य करेंगे तो इन सभी चीजों से बचा जा सकता है। दूसरा, मौसम का आनंद लेना है, अदरवाइज जीवन का भी आनंद लेना है, लेकिन थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारियों को और अपने प्रति समझना है, अपने परिवार के प्रति समझना है, और इसमें एक अगर बड़ा परिवेश देखें कि पूरा विश्व एक परिवार है तो हम अपने देश के बारे में समझना है, तो अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो इन सारी घटनाओं से बचा जा सकता है, इसमें कमी लाई जा सकती है।
1: दुर्घटना और प्राथमिक उपचार, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संजय यादव। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है, तो रहिए स्वस्थ और सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम हर रोज सुबह 6:35 पर आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्रीराम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहां सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज के गायक कलाकार थे रविंद्र साठे। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा सुनिएगा रात 10 बजे से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा सुबह 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित भीमसेन जोशी का गायन। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कलाकार होंगी मिताली सिंह। शाम 7:31 पर सुनिएगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। आज आपके ईमेल पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और स्तुति मिश्रा। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनेगा डॉक्टर सुधीर सिंह से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत। बातचीत का विषय होगा सब्जी में कटाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं तेज बहादुर यादव और साथियों का गाया लोकगीत। हम आपको याद दिलाते चलें कि इन्हीं का गाया लोकगीत सुबह 9:50 पर भी आप सुन सकते हैं। युवा दोस्तों की युवाणी सजेगी शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, युवाणी क्विज, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल सुनिएगा शाम 5 बजे से, जिसमें डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय की वार्ता का विषय होगा नैतिक मूल्यों का महत्व। इसके अलावा बाल गीत भी बच्चे सुनेंगे। लोक रंग व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीत का

0: झटपट मुशायरा इम्तियाज अहमद अंसारी की लिखी ये झलकी सुनिएगा आज इतवार है कार्यक्रम में दिन 1:15 पर। प्रस्तुति होगी मधुर श्रीवास्तव की। हेलो फोन इन फरमाइश, आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम होगा दिन 12 बजे से और आपकी फरमाइशों के साथ स्टूडियो में होंगी स्वस्ति श्रीवास्तव। आरोग्यम स्वास्थ्य संबंधी ये फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा दिन 11:30 पर। विषय होगा अस्थमा कारण लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विकास जायसवाल, जिनसे बातचीत करेंगे शिखा श्रीवास्तव। बाल संग सुनिएगा दिन 11 बजे से। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ हिंदी सुनिएगा सुबह 10:10 से। मधुर गीतों की महफिल सजेगी मधुरिमा में सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे से। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रेडियो एक प्रभावशाली माध्यम है, रेडियो का प्रयोग करें। रेडियो पर विज्ञापन सर्वोत्तम और सस्ता है, रेडियो पर विज्ञापन देकर अपनी आय बढ़ाएं। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। देशेन ह्यः 80तमः स्वातन्त्र्य दिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रियध्वजम् आरोहितवान् तथा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विगतेषु 12 वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वसंकल्पेन समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसम्भवं प्रयत्नम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन् स्वप्नाः दृढतराः संकल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यं च वर्धयन्ति।
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: विकसित भारताय यूनां महिलानां च सशक्तीकरणे बलं दत्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्नानां लोकसेवा परीक्षाणां कृते निर्धन मध्यम वर्गीय परिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कं अन्तर्जाल माध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि 1 वर्षे 1 कोटि युवभ्यः AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य राजस्थानस्य अलवर नगरे स्थिते अलवर सरस दुग्ध परिसरे नूतनस्य दुग्ध संयंत्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सहकारिता मन्त्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् अवसरे अन्तर्जालीय माध्यमेन शिलान्यासः क्रियते तथा राजस्थान

हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग बनारस भाई। नई मॉर्निंग की नई वाइब के साथ मैं हूँ आज एक बार फिर आपकी रेडियो दोस्त नैन्सी आपके साथ और लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग बनारस। तो भाई बनारस कल का दिन कितना खूबसूरत था ना। 15 अगस्त तिरंगे की शान देशभक्ति के गीत स्कूल और कॉलेज के प्रोग्राम्स कल्चरल परफॉर्मेंसेस मिठाइयाँ और हर तरफ एक अलग ही ऊर्जा। कल हमने अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाया लेकिन आज 16 अगस्त की इस सुबह जब हम अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ लौट रहे हैं तो क्यों ना कल की उस खूबसूरत फीलिंग को थोड़ा सा आज भी अपने साथ रखें। और इसी से जुड़ा है एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, वही 15 अगस्त के बाद अब क्या? क्या आज़ादी सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करने की चीज़ है या इसे हम अपनी रोज की जिंदगी में भी महसूस कर सकते हैं? दोस्तों आज़ादी शब्द सुनते ही नेचुरली हमें फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल सेक्रीफाइसेस और वो सालों की कहानी याद आती है जिसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और ऑब्वियसली

आज़ादी की इम्पोर्टेंस को हम कभी मेज़र भी नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं आज़ादी को थोड़ा अलग नज़रिए से देखना चाहती हूँ और आपको दिखाना भी चाहती हूँ, एक बहुत पर्सनल नज़रिए से। दोस्तों, आप और हम अपनी डेली लाइफ में कितने आज़ाद हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही कि आपको घर से बाहर जाने की परमिशन मिलती है या नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि क्या हम अपनी लाइफ के डिसीजंस में अपनी आवाज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी दूसरों की ओपिनियंस को देते हैं। अब ज़रा सोचिए, कितनी बार हमने कुछ करना चाहा और फिर खुद ही खुद को रोक लिया, अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ सोचकर। ये चार वर्ड्स कितनी बार हमारे प्लान्स को ब्रेक कर देते हैं, प्लान्स में ब्रेक बन जाते हैं। कभी कोई डांस सीखना चाहता है लेकिन सोचता है अब मेरी एज नहीं है। कोई सिंगिंग करना चाहता है पर कहता है मेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं। कोई करियर चेंज के बारे में सोचता है पर डरता है कि लोग क्या सोचेंगे। कोई अपनी बात कहना चाहता है लेकिन रिलेशनशिप या फैमिली के डायनामिक्स की वजह से चुप रह जाता है। और कभी कभी तो हम सिर्फ इसलिए खुश होने से भी हेजिटेट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारी खुशी को जस्टिफाई करना होगा। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बिजनेस संभालना है, किसी को घर बच्चों और फैमिली की देखभाल करनी है, किसी को स्टडीज और करियर की टेंशन है। इसलिए आज़ादी का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही ना हो। शायद रियल क्वेश्चन ये है ही नहीं कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच क्या हम अपने लिए भी कुछ डिसीजन ले पाते हैं। क्या हम कभी अपने आप से पूछते हैं मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, या फिर हमारा ज़्यादा वक्त ये सोचने में निकल जाता है कि मुझसे दूसरे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह कभी कभी हम किसी डिसीजन को सिर्फ इसलिए पोस्टपोन करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये छोटा सा सेंटेंस हमारी लाइफ में कितनी बड़ी जगह बना लेता है, क्यों है ना। हम क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, किस एज में क्या करना चाहिए, हर चीज़ के साथ एक इनविजिबल ऑडियंस खड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिन लोगों के ओपिनियन का हम इतना प्रेशर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारी लाइफ के हर डिसीजन के साथ कल भी मौजूद हों। तो कभी कभी अपने आप से पूछना भी अच्छा है कि मैं ये सच में करना चाहता या चाहती हूँ, या सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे किसी के जजमेंट का डर है। दोस्तों, और एक छोटी सी फ्रीडम जिसे हम अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं वो है ना कहना। जी हाँ, हर किसी को हेल्प करना अच्छी बात है लेकिन हर बार अवेलेबल रहना पॉसिबल नहीं होता। कभी हम थके हुए होते हैं, कभी बिजी, कभी सिंपली मन नहीं होता, फिर भी हम हाँ बोल देते हैं और बाद में खुद से ही इरिटेट होते हैं। शायद एक पोलाइट आज नहीं हो पाएगा भी परफेक्टली ओके होता है। किसी को मना करना और किसी को हर्ट करना दोनों अलग है। बाउंड्रीज का मतलब डिस्टेंस बनाना नहीं दोस्तों, कभी कभी अपनी कैपेसिटीज की ऑनेस्टली समझना होता है। और फिर आती है कंपैरिजन की दुनिया। आज किसी का लाइफ अपडेट देखना हो तो फोन खोलिए और बस, किसी की न्यू जॉब, किसी का न्यू हाउस, किसी का वेकेशन, किसी की अचीवमेंट, किसी की परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, और हम बिना नोटिस किए अपनी लाइफ का कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। ये तो मुझसे आगे निकल गया, इनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, मैंने अभी तक क्या ही किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एवरीडे रियलिटी को किसी और के सिलेक्टेड मूवमेंट से कंपेयर कर रहे होते हैं। शायद थोड़ी आज़ादी यहाँ से भी मिल सकती है। हर किसी की टाइमिंग को अपनी टाइमिंग ना बनाना दोस्तों। इसी तरह हमने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लिया और कुछ साल बाद लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है या ठीक नहीं है, तो क्या हुआ। लाइफ में हम सभी ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं। जो 20 साल की एज में इम्पॉर्टेंट था, ज़रूरी नहीं कि 35 साल में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो। ओपिनियन चेंज करना हमेशा वीकनेस नहीं होता दोस्तों, कभी कभी इसका मतलब होता है कि हमने कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा, कुछ नया समझा। और शायद हम सबका सबसे डिफिकल्ट फ्रीडम एक और चीज़ है, वो है खुद को फॉरगिव करना, यानी अपने आप को माफ़ करना। हम दूसरों की गलतियों को तो समझने में काफ़ी जनरस होते हैं, कोई बात नहीं हो जाता है, लेकिन अपनी गलती हो तो वही सेंटेंसेस खुद के लिए बोलना मुश्किल होता है। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक रॉन्ग डिसीजन, एक फेल्ड प्लान, हम सब उसके बारे में बार बार याद

करते रहते हैं और खुद को जज करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उस एक्सपीरियंस से हमने कुछ सीखा है तो शायद उसे वहीं रहने देना भी ज़रूरी है, एक एक्सपीरियंस के रूप में, एक आइडेंटिटी के रूप में। लेकिन यहाँ एक और बैलेंस है, यहाँ हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी फ्रीडम का मतलब दूसरों की फ्रीडम को इग्नोर करना नहीं होता। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी चॉइसेस को रिस्पेक्ट मिले, तो दोस्तों मुझे भी दूसरों की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना होगा। हर इंसान का लाइफस्टाइल, प्रायोरिटीज़ और हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। किसी के लिए करियर सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए आर्ट, तो किसी के लिए ट्रैवल, और किसी के लिए एक सिंपल पीसफुल लाइफ। हमें हर लाइफ को अपने स्केल से मेज़र करना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, शायद आज़ादी का मतलब हर बार कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना नहीं होता। कभी कभी ये बस इतना सा होता है कि हम अपनी बात को भी उतनी ही अहमियत दें जितना दूसरों की बातों को देते हैं। अपनी पसंद के लिए थोड़ी सी जगह बनाएं, ज़रूरत पड़ने पर नो कहना सीखें, अपनी गलतियों को समझकर आगे बढ़ें और दूसरों को भी उनकी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की स्पेस दें। तो आज आपने अपने आप से एक छोटा सा सवाल ज़रूर पूछना है कि मेरी ज़िंदगी में वो कौन सी एक चीज़ है जहाँ मैं थोड़ा और खुलकर जीना चाहता या चाहती हूँ। दोस्तों, हो सकता है जवाब बहुत ही सिंपल सा हो, लेकिन शायद वही छोटा सा जवाब आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत बदलाव की शुरुआत बन जाए। चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे और सुनवाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, फिर जानेंगे आज यानी 16 अगस्त के इतिहास के बारे में।

तो बनारस इस मज़ेदार मोटिवेशनल सॉन्ग के बाद चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे और बताते हैं क्या कुछ है खास आज यानी 16 अगस्त के इतिहास में।

दोस्तों, आज सन 2004 में ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी टीम ने ओलंपिक नौकायान में विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। आज ही के दिन सन 1990 में चाइना ने अपना पहला परमाणु परीक्षण लोपनोर में किया। आज ही के दिन जन्म हुआ था सन 2001 में भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का। आज ही जन्म हुआ था सन 1904 में स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान का। सन 1928 में प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक, राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी का। आज ही के दिन जन्मे थे भारतीय निर्देशक डेविड धवन सन 1951 में। आज ही के दिन जन्म हुआ था सन 1970 में अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री मनीषा कोइराला का। तो बनारस, ये था इतिहास में आज का दिन। और दोस्तों, अब जान लेते हैं देश दुनिया और बनारस का हाल समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पारंपरिक एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री राज नाईक और अलग अलग क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े आर्थिक सुधारों का संकेत दिया। कहा कि विकसित भारत के लिए पुरानी नीतियों से काम नहीं चलेगा और सुधारों की गति बढ़ानी होगी। उन्होंने युवाओं को फोकस में रखते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए सप्त शक्ति सप्त धारा का मंत्र दिया, जिसमें रक्षा क्षेत्र, गति शक्ति, ब्लू और हरित इकोनॉमी तथा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सॉफ्ट पावर के 7 क्षेत्रों के विकास की गति में तेजी लाने का आह्वान किया। युवाओं को साधने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग से लेकर अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल प्रशिक्षण देने जैसी घोषणा भी की। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत ड्राफ्ट नियम भी जारी किए हैं, जिससे निजी और विदेशी कंपनियों के लिए परमाणु बिजली परियोजनाओं में निवेश का रास्ता भी खुल चुका है। तो बनारस, ये था देश दुनिया और अपने बनारस का हाल समाचार। इसी के साथ आज का गुड मॉर्निंग सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। आपको आज की बातचीत पसंद आई या नहीं, अपना फीडबैक हमें जरूर लिख भेजें। हमारे मेल आईडी pkldaiarvaranasi@gmail.com पर। इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त नैन्सी को अनुमति। मिलेंगे एक नई सुबह, नई डिस्कशन, नई मोटिवेशंस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। संपूर्ण राष्ट्र में कल धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया तिरंगा, कहा आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। UPSTF में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत मिलेगा कीर्ति चक्र। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही छिटपुट वर्षा, उमस से मिली राहत, अगले एक सप्ताह तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देशभर में कल 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
4: भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थीं। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है।
4: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है।

0: 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस पर कल देर शाम तक विविध आयोजनों का सिलसिला चलता रहा। मुख्य समारोह कल सुबह लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, इसका अर्थ अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, निरक्षरता और असमानता से पूर्ण मुक्ति भी है, जिसके कारण देश लगातार कमजोर हुआ है।
2: आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है।
1: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को यूथ पॉलिसी का तोहफा दिया। उन्होंने यूथ पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि इससे भविष्य में युवाओं के कौशल, नवाचार और रोजगार को मजबूती मिलेगी।
3: हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।
1: मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ अधिकारी सुनील कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी को बनाए रखने के लिए किसी एक समूह, जाति, संप्रदाय को ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधान भवन के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को अपने आवास पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कलाकारों से संवाद भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित जन भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। कार्यक्रम में जन भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आदर्श माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि अन्य मंत्रियों ने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग लिया। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक अस्मिता डे को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के डीजीपी द्वारा सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 75 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। वे मेरठ में कुख्यात अनिल दुजाना से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान के खुलने का समय

0: सुबह 10 बजे और बंद होने का समय शाम 6 बजे होगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक दिया जाएगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कल से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे। ये वस्त्र बिना सिला हुआ होगा, रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की भी व्यवस्था की जाएगी। हरियाली तीज का त्यौहार कल प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अयोध्या में सावन झूला मेला की शुरुआत कल से हो गई है। ये मेला 28 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा हो रही है। वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। संपूर्ण राष्ट्र में कल धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया तिरंगा। कहा, आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। यूपीएसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत मिलेगा कीर्ति चक्र। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही छिटपुट वर्षा, उमस से मिली राहत। अगले एक सप्ताह तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग गुर्जरी तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत की है नाना मूले ने और हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वाला वालकर।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग गुर्जरी तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत की थी नाना मूले ने और हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रैली सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
4: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1

0: डॉक्टरों को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और

0: जाओर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
1: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अक्वापदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गेंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के